मोहब्बत जो में जिनके हाथ जवानी पांव पड़े दिन रात सुने फिर हाय वो किसकी बात हो।